0: संतुष्ट लग रहे थे इन बातों से, सब सुन के भीष्म थोड़ा संतुष्ट लग रहे थे, उनकी आंखें
1: क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र जी यहाँ पर ये वो समय है जब जिस समय भीष्म पितामह जी सैया पे,
0: हाँ उसी समय की बात चल रही है,
1: मान सैया
0: आखिरी टाइम की बात चल रही है,
1: आखिरी टाइम के बाद चल रहे हैं।
0: हाँ, भीष्म इन बातों से, कृष्ण जी की बातों से संतुष्ट थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है, इस धरा मतलब इस धरती पे आज अंतिम रात्रि थी उनकी, कल संभवतः चले जाना हो अपने इस अभागे भक्त पर, कृपा करना कृष्ण। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज मेरा अंतिम दिन हो, कल मुझे जाना है, तो मेरे पे थोड़ा कृपा रखना। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। युग पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिकता और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म रक्षा, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षता। तो कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे?
1: मैं समय के ध्यान देते हुए राजेंद्र जी मैं कहूं तो तनी लंबा हो जाएगा।
0: हाँ, तो चाहतर
1: तो ऐसा करते हैं, बबली जी पहले अपना अवृतांत को सुना देते, क्योंकि आज का हमारा विषय है हवन कुंड।
0: हाँ, हाँ।
1: और हम सभी जानते हैं हवन कुंड का मतलब क्या है, तथा हवन कुंड के बारे में बबली जी सुनाने वाले हैं। पर आज का विषय, जैसे कि शुरू से कहा गया है, हवन का महत्व, तो बबली जी हम सबको हवन कुंड के बारे में कुछ सुनाते हैं, फिर आगे कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो बबली जी आपके ओर, माइक्रोफोन ऑन कर दिया गया है, और सुनाइए।
2: हवन कुंड, पंडित जी की कार्रवाई हुई, पूजा वे बैठ तो गए, लेकिन सोच हमारी ही रहती है। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया, सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक तो स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
1: तो बबली जी, गृह मालिक, राजेंद्र जी, गृह मालिक यानी कि जो घृत छोड़ते हैं,
0: गृह मालिक जो घर का मालिक है और वो हवन कर रहे हैं, तो जब जैसे घर में सारे लोग बैठे हवन करने के लिए, और जो बड़का रहा, मतलब जो सीनियर रहा घर का मालिक,
1: एकदम सरनामे में,
0: हाँ वो एकदम सरनामे में रहला, तो वो घी की आहुति देता है और बाद बाकी संविदा की आहुति देते लोग।
1: ऐसा
0: जी,
2: हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता,
0: इस सामग्री
2: डालता इस अशंका
0: जी,
2: इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले सामग्री खत्म ना हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे, उनके मन में भी डर था कि घी खत्म ना हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई, घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था।
1: तो बबली जी, हवन सामग्री बच गया और घी आधा से भी ज्यादा इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ,
2: नहीं हुआ, नहीं हुआ,
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना पहले घी चला देते हैं?
0: जरूर,
1: क्योंकि अभी तो सामग्री बाकी है, घी बाकी है, तो पहले एक घी चला देते हैं, फिर उसके बारे में हम सब और भी संदेश सुनने वाले हैं।
0: जरूर।

0: हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। तो बबली जी आप हवन की बात कर रहे थे तो करेंगे।
1: हाँ जी, हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए।
2: तो घर पूरा धुआं से भर गया।
0: हाँ,
2: ये धुआं अब ज्यादा हो गया सामान मेरे ख्याल से, सामग्री और एक ही दान में सब डाल दिए।
1: हाँ जी, धुआं तो होगा फिर।
2: तो आगे सुनाइए बबली जी।
1: अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। यही रुक जाते हैं। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या खत्म ना हो जाए।
2: यानी कि लोग अपना कंजूसी किए।
1: हाँ जी, ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं, तो जो अंत में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही है। उसे बचा कर क्या करना, बाद में तो सिर्फ धुआं ही होना है। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समर्पित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का ये सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना सामग्री खत्म हो ना बची रह जाए। यही है लाइफ का मैनेजमेंट करना। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं है।
0: ना चाहे सपनों के चक्कर में कोई जीना ही भूल गए, और लाइफ मैनेजमेंट भी इसी हिसाब से होना चाहिए।
1: हाँ जी,
2: कि कंजूसी ज्यादा ना रहे,
0: ना चाहे ज्यादा करे,
2: ज्यादा करते करते बस सब बच जाते हैं। धुआं ही धुआं हो जाता है,
0: धुआं हो जाता है,
2: अंधेरा धुआं अंधेरा कर देता है। पर राजेंद्र जी आज काम है। बबली जी आप कुछ कहने वाले थे।
1: हाँ जी, आखिर में यह मायने नहीं रखता कि हमने जिंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने उन सांसों में कितनी जिंदगी जी,
2: कितनी जिंदगी जी। तो ये बात हुआ कि अच्छा संदेश जो हवन कुंड के अंतर्गत आपने हम सबको दिए। और राजेंद्र जी अभी तो हमारा विषय के ओर हमें छलांग लगाना है, पर शांता जी भी कुछ तैयारी रख चुके हैं, तो क्यों ना पहले हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर शांता जी।
0: या शांता जी पहले कुछ कहना चाहें।
3: हाँ जरूर, ये
2: शांता जी सभी सुनने वालों से मैं ये क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि शांता जी तैयार हो चुके हैं कहने के लिए।
3: जैसे अभी बबली जी ने कहा ना, तो सिर्फ पूजा और हवन से भगवान नहीं मिलता है ना।
1: सही बात,
3: सिर्फ पूजा और हवन से भगवान नहीं मिलता। भगवान की प्राप्ति के लिए मन में दयावन और इंसानों के प्रति करुणा भी होना चाहिए।
2: करुणा भी होना चाहिए।
3: करुणा, करुणा,
2: करुणा,
3: करुणा
0: जी। करुणा मतलब दया भाव,
2: दया भाव,
0: करना चाहे करुणा।
2: तो ये करुणा और करुणा ये मौसी और
0: नहीं, नहीं
2: भांजे नहीं।
0: करुणा तो बीमारी रहा, हाँ, करुणा दया रहा।
2: दया। तो दोस्तों जैसे कि शांता जी भी सुना ही चुके हैं, हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं, और गीत के बाद फिर हम सब आपके साथ और जो आज का विषय है जो हवन का महत्व, उस अंतर्गत हम सब बढ़ने वाले हैं। तो राजेंद्र जी क्यों ना पहले गीत चला देते हैं।
0: जरूर।

0: वैज्ञानिक रूप से आप,
1: तो उसका महत्व हम चाहें कि सबको सुनाएं। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी पर किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को भी शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। टोंटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर भी की गई अपनी रिसर्च में ये पाया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो, तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, इस पे जरूर कुछ और हम लोग के रख देना चाहिए, क्योंकि जैसे बबली जी भी बता रहे थे ना, तो लतरलक वो तो संदेश था।
1: हाँ।
0: पर संदेश के माध्यम से हम सब ये भी जाने
1: वैज्ञानिक
0: के माध्यम से क्या है, तो आगे आप सुनाइए राजेंद्र जी।
1: तो वो जो खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु होते वो भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च की। क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश होता है अथवा नहीं?
0: राजेंद्र जी, वातावरण माने तो?
1: वातावरण मतलब जो
0: जैसे यहाँ हम
1: एटमॉस्फेयर रहा उसको वातावरण कहना। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। विषाणु मतलब कीड़े मकोड़े जो
0: बैक्टीरियल
1: विषयुक्त होते हैं, बैक्टीरियल वो नाश कर देते हैं। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी काम किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी 1 किलो जवा जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुई।
0: तो ये आम में इतना कीमत है,
1: आम में इतना कीमत रहा
0: इसी कारण राजेंद्र जी, क्योंकि फलों में कहा जाता है आम को फलों का राजा आम।
1: हाँ।
0: तो उसका लकड़ी में भी इतना महत्वपूर्ण चीज है,
1: इतना महत्वपूर्ण चीज है। पर जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई, तो 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 14% कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा में मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे, कक्ष मतलब जो गेट का दरवाजा, कमरे का जो दरवाजा है जहां से धुआं बाहर निकल रहा है उसके बात चल रही है, दरवाजा खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 16% कम था। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा और उस कक्षा की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। यह रिपोर्ट एंथोफार्माकोलॉजी के शोध पर रिसर्च जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी 2007 में भी दिसंबर 2007 में छप चुकी थी। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियां एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरियों का भी नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। अगर चाहे तो अपने परिजनों को इस जानकारी से अवगत जरूर कराना चाहिए। भगवान सभी परिजनों को सुरक्षा एवं समृद्धि प्रदान करते हैं, उनका जीवन मंगलमय भी रखते हैं। इस प्रकार की जो हवन का महत्व था, इस प्रकार से रहा। तो अब आप चाहे कि कुछ बहुत ही सुंदर सा जो नगमा है वो लगाना।
0: शांता का पिटारा में तो काफी और सुंदर सुंदर गीतों लेकर शांता जी आए, पर शांता जी आप भी कुछ कहने वाले हैं जो हवन के बारे में जो आपने लेकर आए, तो हम सबको बस शांता जी का बटन ऑन करना है। राजेंद्र जी,
1: जी जरूर, एकदम बटन ऑन है।
0: बटन ऑन कर देते हैं तो शांता जी बस अपना
2: थोड़ा दच में बता दे।
0: जरूर जरूर शांता जी।
2: हवन के बारे में चल रहा ना, अन हवन इज अ सॉर्ट पूजा फॉर एयरिंग मेट फीर ऑफर एंड हियर बाय नोदख या अलेन द स्केपर फन हैड बखेन मेडन एंड

0: जो हमारे सूरीनाम का याद और कराए, और हम सब यही गीत हर बार इच्छा रखता हूँ कि ये गीत हम सब चला सके, पर हर बार ये नहीं हो पाता है। और ये बात है कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। शांता जी, सुख के ताला के ओर हम सब के ओर हम सब के बताइए,
1: सुख की ताला किसने लगाई,
0: सुख की ताला किसने लगाई?
2: सुख का ताला तो शांता जी ने लगाया होगा,
3: हमने तो नहीं लगाया।
0: हमने भी नहीं लगाया,
4: हमने तो भी नहीं लगाया।
0: तो दोस्तों, सुख का ताला, अब ये मुसीबत हो गया, सुख का ताला किसने लगाया, या आप अपना ताला खुद और लगाए हैं? बबली जी,
5: मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिरन की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर और शेर की रफ्तार 98 होती है। इसके बावजूद अक्सर हिरन का शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरन को लगता है कि वह शेर से कमज़ोर है। यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है, और हिरन का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए आप खुद पर यकीन रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। आप अपने सपने और लक्ष्य पर अड़िंग रहिए। कोई आपका साथ दे ना दे, खुद पर यकीन रखिए।
0: बबली जी ने ये संदेश दिया कि हमें अपने आप को और ये यकीन रखना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। ऐसा है राजेंद्र जी कि नहीं?
3: हाँ, ऐसा ही है।
0: बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के देखेंगे तो बस हिरण के हाल होगा, और आपका रफ्तार क्यों ना 90 किलोमीटर पर यूर हाँ पे चल रहे,
4: पर
0: और चलते रहेंगे तो शेर का बाप भी नहीं पकड़ पाएंगे।
3: पीछे ना चाहे देखे, आगे
0: पीछे पीछे जो घूम घूम कर देखते रहते। शांता जी, सही बात। शांता जी, आप कुछ कहने वाले हैं?
4: नहीं तो हम तो चकरिया ही आपके बात सुन के, ये शेर वाला और हिरन वाला,
0: शेर और हिरन के बात सुनकर ऐसा। ये पता है राजेंद्र जी, मैं पार्क जाता हूँ दौड़ने को ना, तो पार्क में मैं जब शुरू करता हूँ तो बार बार यही सवाल आता है।
3: कौन सा पार्क आप जाते हैं?
0: सैद पार्क, यहाँ पे खेते खेते जाता हूँ ना, तो जाता हूँ तो बस जब दौड़ने लगता हूँ ना।
3: बबली जी भी जाती है?
0: हाँ, जाता है, जाती है। पुलिस रेलवे में कुछ गड़बड़ हो ही जाता है।
3: हाँ।
0: तो मेरा जब स्पीड जब चढ़ता है ना, तो राजेंद्र जी बस यही वृतांत को मैं अपने और सिर से ले जाता हूँ कि पीछे चाहे जौन हो, बस संजय बढ़ते चलो और 1 किलोमीटर से 2 हो जाता, 2 से 3 हो जाता है, 3 से 4 हो जाता, 4 के आगे मैं जाता ही नहीं। राजेंद्र जी, अगला गीत की ओर हम सबको बढ़ना है, क्योंकि
3: अगला जो गीत है वो उस गीत को सुनने से सब लोगों को यही लगता है कि अब हमारा समय जो है
0: यहाँ पर आ गया है कि
3: हाँ, समय आया नहीं है लेकिन विराम का समय है।
0: विराम
3: का तो लागी छूटे ना अब तो सनम, इसी समय से हम अपना पूर्ण करते हैं। तो क्यों ना इस सुंदर सा जो गीत है इसको चला दिया जाए।

प्यार किया तेरी कसम। सुने वालों, ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। सुने वालों, आपको जैसे पता है गीत के अनुसार हम आपको यहाँ से धन्यवाद कहती हूँ साथ देने और सुनने के लिए, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम और प्रणाम।

सोच ले फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा। जैसे ही इस गाने के ये बोल आते हैं हमें लगता है कि अब एक हफ्ता बाद ही सब लोगों से मिलेंगे। रेडियो फाउन हिंदुस्तानी के सभी सुनने वाले श्रोताओं को यानी मेरा राजेंद्र सिंह का नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए सबको नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाते हैं। बस यही जिंदगी है दोस्तों। हमारे जो विशेषज्ञ है रत्ना जी दनहाक से, संजय शर्मा जी पहाड़गंज न्यू दिल्ली से, प्रवेश कालिया जी जो प्रधान है बजरंगी सेना मोहन गार्डन उत्तम नगर से, और हमारे साथियों जैसे कि शांता खिमाई, बबली आसरा जी, हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही रखता हूँ कि कुछ ना कुछ छोटा सा संदेश जरूर आपके पास पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप सभी को नमस्कार।

सुनो लो, मैं आपका सेवक संजय और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार है, या कर्म के रास्ते पे चलेंगे या धोखा देने का इच्छा रखते हो।

मैं हूँ संजय और कुछ ना कुछ तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि किसी ने ये भी कहा है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो हिम्मत जो है तो वैक्सीन का क्या।

क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे इस गाना का धुन भी बदल गया, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से बदलने चाहते हैं? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं।

जैसे कि अभी आपने सुने। नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं। लौटने का रास्ता बस ये मत गवाना।

क्योंकि कहा गया कि असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है।

हृदय से आपको सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे देर से आएगा लेकिन आएंगे जरूर। बस धैर्य रखो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों को साथ देती है।

याद रखना, ये किस्मत भी क्या चीज है ना, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। और जो साथ देती है तो वो बस ये तीन शब्द जरूर कहते हैं, छोटे छोटे शब्द है, मैं हूं ना, और मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

खुशी के लिए बहुत कुछ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा हम क्यों समझते हैं? किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव करता है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है। और सम्मान कोई बैंक नहीं होता है, सम्मान कोई बैंक नहीं होता, उसकी गारंटी सिर्फ आपका चरित्र देता है। दोस्तों, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से हारने का बस ये अपने दिमाग से निकाल दे। तो जीत निश्चित हो जाता है।

भी ठीक एक स्टेशन की तरह है। आप तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। इसी प्रकार से जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हम इस संसार के मेला में रह रहे हैं और ठीक जीवन भी एक स्टेशन की तरह। ये संदेश भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। उसे कौन बदलता है? उसे मजबूर कौन कर देता है? कहते हैं कि लोग और वक्त और हालात। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मजबूर करने वाला लोग, वक्त और हालात।

है कि जीवन के पथ प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। याद रखो, याद रखो कि पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट और बर्दाश्त करनी पड़ती है।

को जरूर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। और याद रखो, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट बर्दाश्त करना पड़ती है।

मन की सोच सुंदर हो तो मन की सोच जब सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है।

मन की सोच जो सुंदर ना हो तो जब सुंदर ना हो तो मैं ये आपके ऊपर रख देता हूं।

दोस्तों, उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। और ये नशा जब जिंदगी जीने का होना है तो आप जीने में भी मजा लेंगे। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जीने की, और क्या जीने की, जिंदगी जीने की। कहते हैं कि प्लसीर हैबन इन इट लाइफन।

क्योंकि एक ना एक दिन तो कहा गया है कि हम कहानी बनकर के रह जाएंगे हम सब। एक ना एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब। बस कोशिश रहे कहानी अच्छी हो।

दोस्तों शायद इस बात को भी आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो संजय किस कारण यहां बैठे हैं। क्योंकि बिना रुके सफर कर रहे हो, और किस चीज का सफर? उम्र का सफर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम क्या करते हैं। हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। आप इस ख्वाहिशों को छोड़ सकेंगे? कि ये उम्र कहीं रुकती नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं कि उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है। आप हमारे पास जरूर स्टूडियो में आ सकते हैं। हम तो हर वक्त चाय तैयार रखते हैं। आपके ही मुलाकात की फुर्सत नहीं।

आपके पास टाइम नहीं है। और हमें क्यों टाइम नहीं है? कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। जिम्मेदारियां और घेरे हुए और जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है।

अभी सुनाए थे। मैं हूं ना, ये तीन छोटे छोटे शब्दों छोटे शब्दों आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द जो किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं,

संत ने भी बड़ा अच्छा कहे थे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि जीवन का असली सच प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो वो अधूरा छोड़कर चले जाता है।

सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता।

दोस्तों इस बात को गौर से सुनो कि माँ बाप वृक्ष के उन पत्तों की तरह है जिनकी छावा में तुम्हारा बचपन पला है। उनके इस उपकार को याद रखना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना।

कि कुछ समय जब बीत जाता है जीवन का, तो जिसे हम शायद बुढ़ापा कहते हैं, वो कुछ भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चों पे। धीरे धीरे ही सही पर सब हासिल होगा।

ही सही पर सब हासिल होगा, जो कुछ खोया था अब तक सब वापिस होगा। यही सोचते हैं क्योंकि इस बार भरोसा गैरों पर नहीं खुद पर है।

जैसे कि अभी आपने सुने। माँ बाप कभी गलत नहीं होती, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

जरूर ध्यान देना। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

गए हैं कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। क्या है इसमें? इसमें भेद क्या है? क्योंकि ईश्वर भाग्य से हमारे सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं।

आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। अंदर से एक मजबूत फैसले उसका जरूरत जरूर होता है।

सके तो, हो सके तो अगर अपने जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी कुछ और होता है।

घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए।

क्योंकि इस बात को भी याद रखना, हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है।

हमेशा याद रखना, जेब कभी नहीं फिसलती है, दिमाग में जो चल रहा है वे हमेशा जेब पर आता है। तो इस बात पे कुछ और रखना चाहता हूं, गुरु जी ने इस बात को कहे थे, कि पैरों का गरम, पैरों का गरम पेट को नरम और सिर ठंडा रखे।

क्योंकि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता।

बचता है क्या? बचता है कि सब्र करना सीख लो, सब्र करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा।

पुत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान में मोहताज नहीं है।

पुत्र मित्र चित्र और चरित्र। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं।

दोस्तों ये गलत फैमिली में ना रहे। कि हम गलती नहीं करते, क्योंकि गलती पीठ की तरह होती है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है अपनी नहीं।

भी कहा है। ये बुजुर्गों भी क्या क्या कह गए। बुजुर्गों ने कहा है कि रूप और रुपया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये रूप और रुपया, इस पर कभी घमंड ना करें दोस्तों। क्योंकि ये इंसान के पास सदा नहीं रहते हैं।

यहाँ तक हम आपके साथ दिए कुछ समय तक यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ और आपको अच्छा लगा होगा। यही कहना चाहूंगा, सुनते रहना फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक शहर, हर एक कोने, हर एक स्थान पे

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आज आप सबके लिए एक प्रोग्राम लेकर आई हूँ जो धर्मेंद्र जी के ऊपर है।

सुनने वालों, आप सभी को मालूम है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक इतने महान कलाकार थे कि मैंने सोचा आज उन्हीं की जीवनी के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाऊं।

तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ सुनने वालों। धर्मेंद्र जी का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। वह 8 दिसंबर 1935 फगवाड़ा कपूरथला जिला में पैदा हुए। एक छोटे से गांव सानेवाल में पैदा हुए।

धर्मेंद्र जी ने लुधियाना के लालटन कला स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास की। इसके बाद वह एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे।

धर्मेंद्र हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक अभिनेता थे और इनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल भी अभिनेता हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी जिनमें शोले, धर्मात्मा, लोफर, यादों की बारात, फूल और पत्थर, जंजीर, बर्निंग ट्रेन, गुलामी, आग ही आग, तहलका, यमला पगला दीवाना जैसी कई हिट फिल्में दी जो एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है और उन्होंने ही मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। और उनकी अच्छी फिल्मों में चुपके चुपके, सत्यकाम, हकीकत, यादों की बारात भी शामिल है।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म थी ब्लैकमेल, और इसमें धर्मेंद्र जी और राखी गुलजार ने काम किया था। उस टाइम पे ये फिल्म चली और इसका गाना भी खूब चले, और धर्मेंद्र जी एक चॉकलेटी हीरो कहलाए। सब लड़कियाँ उनकी इतनी दीवानी हो गई क्योंकि वो इतने खूबसूरत लगते थे।

धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा पर 6 दशक तक राज किया। 60 सालों के भीतर उन्होंने 300 से अधिक फिल्में की। शुरुआत में रोमांटिक हीरो तो फिर एक्शन हीरो के रूप में भी वे खूब सफल हुए।

0: की कैरियर की सबसे हिट और हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी फिल्म शोले में उनका वीरू का रोल आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी लोगों ने इतनी पसंद की सुनने वालों कि उसके डायलॉग आज भी लोगों को याद आते हैं।
1: जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
2: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
3: वो
4: अरे भाई, बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
1: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय।
2: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
1: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुकियो, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
5: अरे वाह, अरे तुम कैसे हो, तुम यहाँ बैठे हो?
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो, तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया? देखो,
1: मेरा दिल भर चुका।
5: देखा, देखा तुमने?
6: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
5: यूं कि मैंने एक से एक जाले देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो अरे बबालो,
1: मेरा कोई नहीं है या न दोस्त, इसलिए मैं जानते कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
2: कैसी मुसीबतें आएंगी?
1: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail. Angel, बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
2: अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
5: अरे कैसे, हाँ कर दो देना नाथ जी।
1: अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे करूंगा। एक, दो, तीन।
5: मौसी, मौसी हाँ कह दो ना।
7: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
5: अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
7: हाँ कह दो मौसी।
5: हाँ, जीरो, ठहर जा, मैं तैयार हूँ।
2: मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ।
1: मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है, बसंती से।
5: वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
1: अरे गांव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा।
0: सुनने वालों, अभी आपने ये जो डायलॉग सुना, ये फिल्म शोले से लिया गया, और ये मौसी वाला डायलॉग इतना हिट हुआ कि आज जब भी शोले का नाम लिया जाता है तो लोग इस डायलॉग को खूब पसंद करते हैं। सुनने वालों, अब मैं आगे चलती हूँ। सुनने वालों, धर्मेंद्र को किस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया? 1960 के दशक में वह दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार के बाद तीसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। उन्होंने उस दशक में 15 हिट फिल्में दी और 25 सफल रहीं, जिसमें फूल और पत्थर धर्मेंद्र जी की सुपरस्टार बना दिया।

हीमैन के नाम से मशहूर हुए। उन्हें पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले वो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने साल 1964 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। यह अरेंज मैरिज थी।

धर्मेंद्र जी ने 1980 में जब हेमा मालिनी से शादी की तब वो शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी जिनसे 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उन दिनों ऐसी अफवाहें फैली कि एक्टर ने इस्लाम धर्म अपना कर हेमा जी से निकाह कर लिया।

बॉलीवुड के एक्शन किंग के नाम से मशहूर अभिनेता निर्माता धर्मेंद्र ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जो 1960 में बनी थी उससे की। इसके बाद वह फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिका में नजर आए।

धर्मेंद्र जी की कुछ अन्य फिल्में हैं अनपढ़, जिसमें उन्होंने माला सिन्हा, बलराज सहनी और बिंदु जी के साथ काम किया।

सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि उस ज़माने में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत हिट हुई और उनकी फिल्में भी खूब हिट हुई, जैसे शोले, आसपास, सीता और गीता, जो भी उनकी फिल्म आती, ड्रीम गर्ल, चरस, इन सब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और वो सब फिल्में हिट साबित हुई सुनने वालों।

उस समय धर्मेंद्र जी की जोड़ी सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही नहीं, राखी गुलजार, आशा पारेख, अनीता राज और भी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ हिट हुई, और सबसे पहले तो उनकी फिल्म मीना कुमारी जी के साथ बहुत हिट हुई थी। धर्मेंद्र जी ने अगर शुरू में बहुत सारी हिट फिल्में दी तो आखिर भी उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी, जैसे 1990 से 1992 तक उनकी सफल फिल्मों में नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोहराम, तहलका शामिल है, जो एक मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी हिट फिल्में साबित हुईं।

24 नवंबर 2025 को इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया, जो एक कम 90 साल के थे।

धर्मेंद्र के एक भाई भी थे और वो उन्हीं की तरह एक्टर थे। धर्मेंद्र के भाई का नाम अजय सिंह देओल था और उन्हीं के बेटे हैं अभय देओल, वो भी फिल्मी एक्टर हैं।

सुनने वालों, ये जो अभी आपने गीत सुना, ये फिल्म दो चोर से लिया गया। इसमें धर्मेंद्र जी और तनुजा ने काम किया। धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है 21, जो एक वार ड्रामा है और जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें उन्होंने परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश धर्मेंद्र जी का निधन फिल्म की रिलीज से पहले ही हो गया और वो इस फिल्म को नहीं देख पाए। सुनने वालों,

अपने निधन से पहले धर्मेंद्र जी अपने फार्म हाउस में रहते थे सुनने वालों, और वहीं पे वो थोड़ी खेती बाड़ी करते और ताज़ी ताज़ी फल सब्जियां उगाते और उसी को ज़्यादातर वो उपयोग में लाते थे। और बॉम्बे वाले घर में वो थोड़ा कमती रहते थे क्योंकि फार्म हाउस में खुली हवा, खुला वातावरण उनको काफ़ी पसंद आता था सुनने वालों।

फिल्म यमला पगला दीवाना 2011 में प्रदर्शित हिंदी हास्य फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने काम किया। सुनने वालों, धर्मेंद्र जी ने चरित्र भूमिकाओं में भी काम किया। 1990 के दशक में उनको एक स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसी भूमिका में उनकी पहली फिल्म थी सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें उन्होंने सलमान खान, काजोल और अरबाज खान के साथ काम किया।

उनकी अन्य फिल्में हैं कैसे कहूँ के प्यार है, किस किस की किस्मत, लाइफ इन मेट्रो, जॉनी, गद्दार। 2023 में उनकी फिल्म आई करण जौहर की रॉकी और रानी, जिसमें उन्होंने शबाना आज़मी जी के साथ काम किया।

धर्मेंद्र जी ने हिंदी के अलावा पंजाबी और बंगला फिल्म में भी काम किया है। सुनने वालों, राजनीतिक, धर्मेंद्र ने 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। धर्मेंद्र जी ने फिल्मों का निर्माण भी किया। सुनने वालों, 1983 में धर्मेंद्र जी ने विजेता फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम पर रखा। 1983 में रिलीज़ हुई अपनी पहली फिल्म बेताब में विजेता फिल्म्स ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल को मुख्य भूमिका में लॉन्च किया। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी देओल ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इसे संपूर्ण मनोरंजक प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1995 में धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को लॉन्च करने के लिए बरसात फिल्म का निर्माण किया, जो उस समय तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज तक यह पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें नए कलाकारों को लिया गया था।

सुनने वालों, अभी मैंने आप सबको थोड़ा सा धर्मेंद्र जी के बारे में बताने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे फिर अगली बार कुछ और बताने की कोशिश करूंगी सुनने वालों।

जीवन में सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

दोस्तों, आप अपने मूड यानी खुशी के रचयिता खुद है। आपके दिन उतने ही अच्छे हैं जितना आपने उन्हें होने दिया था या होने दिया है। और सफल बनने के लिए प्रयास करना होगा और सफल बने रहने के लिए साझा करना होगा, यानी मिल

भाई बहनों, किसी भी समस्या से भागने से समाधान की दूरी ही बढ़ती है और किसी समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका उसे हल करना है, उसे ओपलोस करना चाहिए।

प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये मत भूलो कि तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक नष्ट कर सकता है। अक्सर ये हमारी आशा, आस्था और विश्वास को भी खा जाता है। मित्रों, यदि आप जानते हैं कि तनाव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, खजोंथेत के लिए ठीक नहीं है, फिर आप तनाव क्यों लेते हैं, तनाव क्यों करते हैं? अनुभव पहले ही बता चुका है मित्रों कि तनाव के कारण कोई समाधान नहीं होता है, कोई अपलोसिंग नहीं होता है। इसीलिए मेरा अनुभव उन सभी से एक अनुरोध है जो तनावग्रस्त हैं कि तनाव आप ना करें। अगर आप थोड़े भी धार्मिक हैं मित्रों, तो इससे कुछ हल नहीं होगा। आप जानते हैं, अपने भगवान से बात करें, विश्वास के साथ बात करें, प्रकृति पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करो मित्रों।

दोस्तों, ऐसी दो चीजें हैं जिन्हें आपको भूल जाना चाहिए। आप दूसरों की जो मदद करते हैं और दूसरों ने जो आपको नुकसान पहुंचाया है, ये आपको भूल जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके अंदर अहंकार कम होगा और तनाव भी कम होगा मित्रों। और जितना संभव हो सके केवल अच्छे कर्म करें, फिर बीते हुए कर्मों के बारे में सोचने का समय नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको फिर वो समय। कृपया आप इस बारे में जरा सोचें, विचार कीजिए।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। फावन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और यहाँ से मैं अत्यंत भजन प्रोग्राम के साथ आपसे जुड़ गए हैं। हम कार्यक्रम यहाँ से अभी प्रारंभ करने वाले हैं और जो अत्यंत प्रोग्राम रेडियो फावन का, सर्वप्रथम पहले सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ। जो बीमार है उनके स्वस्थ में परिवर्तन आए, जिनका आज जन्म दिवस है उन्हें शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको शुभ लाभ और कहा जाता है, और जो बच्चे अपना स्कूल का तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये कहूँगा कि गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे। माँ सरस्वती जो बुद्धि और ज्ञान के भंडार देने वाले हैं उन्हें मत भूलना,

और जो आज अपने यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप समय पे जब हवाई अड्डे से जाना है तो अपने समय पे ध्यान देना, और जो हमारे देश में और फ्रांस से आए तो उन्हें स्वागत किया जाता है।

एक खूबसूरत दिन जो आपकी उम्मीदों और आपके विश्वास को बनाए रखे और आपके जीवन में खुशियां भर दे।

सुनने वालों, हमारी पहला जो फाउन रेडियो के औखतन प्रोग्राम का स्पॉन्सर होते हैं तो कनाडा टोरंटो और नीदरलैंड आम्स्टरडम नेबल पैलेस यू हिपोटेकन एंड फिनांशियरिंगन, जो अगर आपके हिपोटेक और फिनांशियरिंग को ज़रूरती पड़े तो ज़रूर इन्हें फ़ोन कर सकते हैं आप 0625136374।

तेरी जय हो गजानंद जी। जो देवेंद्र जी महाराज ने ये सुंदर सा भजन को और गा करके हम सब के लिए, जो हम सुंदर भजन को सुने और ये भजन का स्पॉन्सर करने वाले कनाडा टोरंटो और नीदरलैंड नेबल पैलेस फॉर ऑल यू हिपोटेकन एंड फिनांशियरिंगन, जिसे के पास आप कोई प्रकार के और प्रश्न हैं तो आप जरूर फोन कीजिए 9625136374 पे। हम आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर जो हम चुन करके रख चुके हैं, पर उस ओर बढ़ने से पहले ये जरूर कहना चाहूँगा कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। हम सुंदर से गीत के और सुंदर से भजन जो अगले हमारे स्पॉन्सर है उस ओर बढ़ने वाले हैं। पहले

बारात ऐसी किसी ने देखी होगी हमारे जो दनहाग शहर से भाई अनंत शर्मा जो खरोथानल का मालिक है और उनके ओर से ये भजन चलाया गया जिसका टेलीफोन नंबर है 9655732867। सुनने वालों हम एक अगला गीत की ओर बढ़ेंगे। अगला स्पॉन्सर गीत जो हमारे लिए रखा गया है और वो गीत का बोल क्या है पहले हम जरा उन्हें ठीक से देख ले कि क्या मांग किया गया है।

को मना लेना ही बेहतर होता है, हर चीज हमें खुशी नहीं देती है। Den Haag Voorpark, Leidschefeens, Sunda Groenten en Fruithandel, Jiska Malik Parsuram Mohalalji He. जहाँ पर अगर आपको उनसे मालूमात करना है तो उनका तार का नंबर 0622795862 पे आप उन्हें फोन कर सकते हैं। शुंदा ग्रुंटन एंड फ्रूटहैंडल, उनके ओर से एक सुंदर सा भजन हम सब के लिए।

लखबीर सिंह लखा ने ये सुंदर सा माँ का भेंट हम सबको सुनाइए। और हमारे ये गीत का स्पॉन्सर करने वाले श्रीमान परशुराम मोहनलाल, जो सुंदा खुरुंतन एंड फ्रुट हैंडल का मालिक है, फोर पार्क लाइट्सविंग देन हाग शहर में। अगर आपके कोई भी प्रकार से और खुरुंतन और फ्रुट जो इम्पोर्टेयर किया जाता है तो जरूर फोन करें उन्हें 0622 795862 पर।

हमारे अगला गीत का स्पॉन्सर करने वाले हैं देव नारायण हरिदत्त रोहित जी, जो देहा एर बाओ एंड ऑनरहाउत बदरायव का मालिक है। वो भी लाइट्सफेन फोर पार्क से, देनहाग शहर से। उनकी ओर से ये संदेश है कि ईश्वर का दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन का प्रकाशित कर देती है। सुंदर सा हनुमान जी का भजन जो उसके ओर से हम रखने वाले हैं।

0: हे महावीर करो कल्याण। ये सुंदर सा गीत जो फोर पार्क लाइट्सवेन डेन हाग शहर से DHR बाउ एंड ऑंडरहाउट बद्रेव जिनका मालिक श्रीमान देवनारायण हरिदत्त रोहित जी है, अगर उनसे आपको मालूमात करना है कोई प्रकार के और ऑंडरहाउट स्वरक सामहिद के लिए तो उनका तार का नंबर है 0626 07 0241। अगला भजन जो हमारा स्पॉन्सर किए गए है तो वो है फाहुन हिंदू बासस्कूल वरेनिंग अलगमेन हिंदू ऑनरवेज नीदरलैंड की ओर से जो डेन हाग शहर में।
1: दादी दादी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, जंगल में जाओ तो मुझे डर लगता है।
2: स्कूल नहीं जाओगी तो होनहार कैसे बनोगी? मैं छोड़ने आती पर पैर में चोट जो लगी है।
1: नहीं मुझे बहुत डर लगता है।
2: इसमें डरने की क्या बात है बेटा, अगर डर लगे तो अपने भाई को बुला लेना।
1: मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है।
2: अरे ये तो है तेरा भाई राम, वो जंगल में रहता है, बस उसे आवाज दो वो

0: जन्मदिन की बधाई हो मास्टर जी।
1: पादे
2: मास्टर जी, ये तो जादू टोना है, बेर खत्म ही नहीं हो रहा है।
1: ये बेर कहाँ से लाए? ये तो
0: मेरे जंगल वाले भाई राम ने दिया।
2: जंगल?

मेरी मंदिर शिव मेरी पूजा अनुराधा पौडवाल ने अपने आवाज से ये सुंदर सा भजन हम सबके लिए रखे। कहावत है कि जरूरत के बगैर भी लोगों को और ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमारे सुरिनाम देश सुरिनाम से लिफोर्नो मैनकंदाम हुक इंदिरा गांधी वख श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर और जिनका वहाँ का जो सदस्य श्रीमान सुभाष महावीर जी जो उस मंदिर से जुड़ा हुआ है, अगर आपको मंदिर का कोई कार्य कराना है तो उनसे ज़रूर मालूमात कीजिए। और तार का नंबर है 005 9 जो नेट नंबर है सुरिनाम का 8675877। अगर आपको कोई प्रकार से इन्फॉर्मेशन मंदिर का लेना है तो जरूर फोन कीजिए। एक सुंदर सा भजन उनके ओर से हम रख

ये गीत का स्पॉन्सर करने वाले हैं सुरीनाम लिफोनो मैनकंदाम हुक इंदिरा गांधी वेग से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर। अगर उनसे मालूमात करना है तो भाई सुभाष महावीर से आप मालूमात कर सकते हैं। इस बात को हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

बच्चे मन के सच्चे, ये सुंदर सा गीत जो फाहुन रेडियो द्वारा आपको सुनाया गया। आपको एक शुभ दिवस, एक ऐसा दिन हुए जिसमें ना सिर्फ आप अपने आप के लिए, कम से कम अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तों, नाते के भूलना नहीं। हम अगले गीत जो चुन करके रखा है, 1981 में निकाला गया ये फिल्म, जो कुछ उस समय पे और ये फिल्म को देखे होंगे,

कुमार गौरव और विजयता पंडित ने इस फिल्म में काम किए। 1981 के ये फिल्म, जो फिल्म का नाम लव स्टोरी से निकाला गया है, ये सुंदर सा गीत। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगले गीत का बोल क्या है कि अभी तो कोई गुस्सा हो गया या गुस्सा हो गए हैं तो उसके लिए क्या होना है। कहते हैं बात बिगड़ जाए तो क्या होगा,

जीत का बोल जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर पल आनंद ले, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती है। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगला गीत जो खुशियों से भरे हुए है,

ये सुंदर सा गीत जो कॉन्सर्ट में गाया गया और खास करके गाया गया तो हमारे अनाउंसर साथी शांता खेमाई जी और उनके आवाज में हम सब सुने। दोस्तों ये बात है कि आज अगर हर पल का आनंद ले, हर पल का आनंद ले, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती है। इस पर ध्यान देना कि हर पल हमें आनंद ही आनंद लेना है, खुशियां कभी इंतजार नहीं करते हैं। दोस्तों इस बात का ख्याल रखना। और खुशियां कभी बताकर भी नहीं आते हैं और जाते हैं।

आना जाना का जब बात हुए तो क्यों ना हम उसे संगीत में सुनते हैं।

गुलजार जी ने बहुत अच्छे लिखे हैं कि हंसते रहेंगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलता। हंसता रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलती। सुनने वालों, जैसे कि मैं देख रहा हूं, हमारा कुलेखा साथी स्टूडियो 2 में उपस्थित हो गए हैं।

आज एक ऐसा दिन बनाइए जहां आप कम से कम थोड़ा से हंसिए, क्योंकि जैसे गुलजार जी ने लिखे हैं कि आंसुओं का जगह आंखों में भी नहीं रहता है, वो भी टपक जाते हैं।

की तमन्ना लता मंगेशकर जी और किशोर जी का आवास में हम सभी इस गीत को सुनेंगे।

की तमन्ना एक फिल्म जिसमें देवानंद जी और सीनत अमन ने अपने काम दिखाए। ये सुंदर सा गीत जो लता मंगेशकर जी और किशोर जी ने अपना आवाज दिए।

तुझे देख कर मेरा दिल खोने लगा, ये सुंदर सा गीत को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बिना रिश्ते किए ही रिश्ता निभाते हैं और शायद वही लोग जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं। बस यहाँ तक था हमारे कार्यक्रम, जो यहाँ से कार्यक्रम हमारे कुलेखा साथी जो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, मैं यहाँ से आपसे विदाई लेंगे। आशा ये रखता हूँ कि सुबह से मैं आपके साथ जुड़े आ रहूं सुंदर सुंदर और भजनों के साथ। फिर कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे।

रे मेरे बीच आपके और मेरे बीच कुछ आखिरी नहीं है सिवाय आखिरी सांस के। तो आपको हम लेकर चलते हैं अदनान सामी की आवाज में

गोल्डन मेलोडीज ऑफ आनंद ने गोल्डन मेलोडीज हम देखे तो अदनान साहनी जी की, जी हाँ, और साथ दे रहे थे आशा भोसले जी। वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो, मेरे जिंदगी का आधार और मेरी सांसों का तार है वो। कितने भी लड़ ले झगड़ ले पर मेरे लिए, जी हाँ, पर मेरे लिए बस प्यार है वो। यहाँ हम सुनेंगे अल्ताफ राजा की आवाज में।

राजा से जब से दूर लगे रहने हो तुम। कितने अच्छे अच्छे लफ्ज़े, कितने दर्द भरे बयान इसमें हमको सुनाई अल्ताफ राजा ने।

और मैं सोचती हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो ये कहना चाहती हूँ कि het leven is toch veel te kort om met spijt wakker te worden. Het leven is toch veel te kort om met spijt wakker te worden. Denk aan de leuke dingen en vergeet de vervelende dingen. भी जरूर कहना चाहती हूँ सुनने वालों की द ड्यूर्स्ट फ्लोइस्टॉफ, जी हाँ, द ड्यूर्स्ट फ्लोइस्टॉफ देयर वेरल इस अंतरान, आपने ठीक सुने कि सबसे महंगा सबसे महंगा पानी जो संसार में है वो आपके आंसू है, हम सबका आंसू है. द ड्यूर्स्ट फ्लोइस्टॉफ देयर वेरल इस अंतरान है बस्ता 1% वाटर एंड 99% गेफूलंस. Denk daarom 2 keer na voor

दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। सुनाए हमको आनंद राज आनंद। जी हाँ, आनंद राज आनंद से हमने सुने ये सुंदर सा गीत और निकाला गया फिल्म मस्ती से। Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, ik barier. Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn. Om met elkaar overweg te kunnen, heb je niet dezelfde ideeën nodig, maar hetzelfde respect. कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, हम नहीं कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, बस दूर होके भी दूरी ना लगे इतना सा रिश्ता बनाए रखना। ए इश्क मैंने सुना था कि तू अंधा है। फिर रास्ता मेरे दिल का बताया किसने। इश्क करते हो और बर्बादी से डरते हो, बड़े नादान हो तुम।

सोनू निगम की आवाज़ में हमने सुने कि सब कुछ भुला दिया। फिल्म का नाम हम देखे तो हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, उसी फिल्म से ये सुंदर सा गीत हमने सुने सोनू निगम

खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कसम से, जी हाँ कसम से, उन्हें याद करके हम मन ही मन कितना मुस्कुराया करते हैं। दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, वो लम्हे जीने की वजह बन, वो लम्हे जीने की वजह बन जाया करते हैं। कहने के तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, कहने के तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, दिल में जो रहे वो अमानत बन जाया करते हैं।

ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तू मां जितनी चाहे हमारी हंसी

आप सुन रहे दीवाना हुआ बादल इंस्ट्रूमेंटल। सुनने वालों, यहाँ से कुछ अहम भोजपुरी फिल्मी भोजपुरी आपके लिए चुनकर रखी हूँ। तो यहाँ से हम सुनेंगे, पहला वाला है काहे बांसुरिया बजावले की।

कहा सुंदर से लता जी की आवाज में अपने सुने सुने वालों की काहे के बसुरिया बजाउले की चल गए ओकर सभी चैन और सुख।

0: बोलबू जहरे बोलबू।
1: कैसे भाई लता जी की और उषा मंजेशकर जी की आवाज में आपने सुने सुंदर सा खूबसूरत सा ये भोजपुरी गीत जो आपके लिए नशर किया जाता है। ये वाला एक जाना पहचान है, आप इसे भी जरूर से पसंद करेंगे।

हाँ भैया कर रे जा चुएला, आपने सुने लता जी के आवाज में साथ दे रहे थे तलत महमूद। हाँ सुनने वालों, यहाँ से आपके लिए पेश किया जाता है और इस बार है कि रखिया बना लो, ये भी भोजपुरी गीत है। सुनो वालों,

भाई, एक भाई के लिए उसकी बहन हमेशा बेस्ट फ्रेंड होती है। सुनने वालों, भोजपुरी गीत में भी इतना मिठास है कि सुनते सुनते आंख भर आता है, दिल रोमांच हो जाते हैं। आप सब सुनते हैं, आप पसंद करते हैं और आपके साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद आते हैं ये सब सुनने के लिए।

0: लता जी से हमने सुने सुने वाले फिल्म का नाम आपसे बता दे कि गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई बे, लेकिन 1963 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ संगीत है सुने वालों, लता जी के आवाज़ में आपने सुने। तो आप सुनते हैं कि लता जी के आवाज़ उन दिनों कैसे थी और आज मैं वो तो नहीं हूँ, पर ऐसे सुंदर सुंदर संगीत हमारे खातिर जो छोड़ गए हैं, तो लता जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद थे।
1: ऊपर से चिल्लाए के जिन बत्ती आवा, नीचे आवा।
2: हम ना आए तो हरे गरज हो तो तुम्हें तो कहे ना चढ़ियाता
1: कौने कही।
2: अरे गुड़वरिया से देखो ना ही हम सूर्य नकल हो।
1: देखत तो है बाकी ना भैया हम ना आए।
2: वो का
1: क्यों देख ली तक का कही तो ही आवा हाथ पकड़ा संभाल के धीरे से जिया हो जिया

अखियां ही अखियां में खो गए। सुनने वालों, आपने सुने आयल आयल बसंत बहार। सुनने वालों, फिल्म आयल आयल बसंत बहार, हाँ भोजपुरी में ये पिक्चर का नाम भी, मूवी का नाम भी लिखा है। और आपने सुने गीता दत्त से और मन्ना दे के आवाज़ में। सुनने वालों,

ना डर बे ना डर बे ना डर बे राम ना डर बे राम ना डर बे ना डर बे ना डर बे

0: कर पर जमाने से ना डर
1: ना डर भैया
0: जान लेके हथे।

जमाने से ना डर गया जान लेके हाथ

हाँ, जब दिल लग जाए तो कोई किसी से डरते नहीं है। आपने सुने गीता दत्त से और मन्ना दे की आवाज में, सुने वालों।

इस बार ये फिल्म के नाम है भोजपुरी, भोजपुरी विदेशिया। हाँ, फिल्म का नाम है भोजपुरी फिल्म या विदेशिया फिल्म का नाम है।

एक संज्ञा के बिना भवनवा लागे ना ही जिया। गानवा के साथ है ढोलकिया, जो आप सुने तो कितना अच्छा लगे कि ढोलकिया के अंदाज से गनवन में कितना अच्छा लगे, हम आपसे क्या कहें।

इश्क करे हूँ जो दिल कह दिलदार बारे बलमू बलमू इश्क करे हूँ जो दिल कह दिलदार बारे बलमू।

ओर से हमने सुने सुने वालों, और ये इसमें तो वार्तालाप हो रहे थे दिल वाले और पैसे वाले के बीच में, और आपको फिर से ले चलते हैं वही सुंदर सा फिल्म विदेशिया की तरफ।

बड़े बड़े

I'm gonna go.

दे की आवाज में आपने सुने वालों, आपने सुने, आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और आप हम यहाँ से बढ़ चलते हैं संगीत संगीत प्रेम कार्यों के लिए।

हाँ जी, मोहम्मद रफी जी की आवाज में हम सबने सुने कि सोनवा के पिंजरा में बंद भयले हाय राम। तो आप सुन रहे हैं सुनवाले भोजपुरी फिल्मी धुन, भोजपुरी गीत जो फिल्म से जो निकाला गया, फिल्म से निकाला गया सुनवालो। आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किया और आप सुनते हैं इसमें रंग बिरंग के गाना है जो हंसाते हैं, रोलाते हैं और वार्तालाप भी करते हैं। दिल के बयान इसमें भी है, अच्छे कैसे कैसे भी सभी तरह के गाना है भोजपुरिया में भी।

साल लाजवाब रोमांटिस मस्ती भरे सुनहरे प्यार भरा गीत आपने सुने सुने वालों। भोजपुरी गीत भी किसने क्या कमाल इस गीत में, जैसे हमने कहा गाना के अलावा आप जो सुन रहे थे इसमें म्यूजिक खासतौर पे ढोलक इसमें कैसे किस तरह से उसका अंदाजा इस भोजपुरी गीत में कितना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, जी करता है बस सुनते ही रहे।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। स्वाहोनरुदियों के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ एंट्री देने वाले हैं शांता जी, फिर उसके बाद में बबली जी, और हमारे पैनल के पीछे हमारे भाई राजेंद्र जी जो इस समय बैठ चुके हैं। तो अभी धीरे धीरे हम सब कार्यक्रम में एंट्री करते हैं और फिर कार्यक्रम के विषय की ओर बढ़ने वाले हम सब।
1: हाँ जी, कहते हैं कि कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। आप सभी फाहर रेडियो के सुनने वालों, हार्दिक से स्वागत है और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।
2: दर्द कम करना है तो उसे समेट कर मत रखो, उसे बह जाने दो, क्योंकि आंखें हमारे दिल का आईना है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: बबली जी ने भी दर्द की बात बताई है, तो दर्द ना चाहिए किसी को। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से यानी राजेंद्र सिंह की तरफ से हार्दिक नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही विशाल कार्यक्रम होने वाला है, और उस कार्यक्रम के जो रूपरेखा रहेगी,
0: तो रूपरेखा की ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी, पहले हम चला देते हैं वो गीत जिनका इंतजार हमारे सभी सुनने वालों हर हफ्ता करते हैं।
3: हाँ,
0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार जिसका मन अभी उदास है। तो राम जी हम सबका बेड़ा पार तो अवश्य करते रहेंगे, पर पहले वो गीत जो हरिओम सरन जी ने हम सबको लिए छोड़कर गए हैं, पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में विषय की ओर छलांग लगाते हैं।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। जब राम जी बेड़ा पार कर लेते हैं तो उदासी मन को न चाहे डरे किसी से। उदासी मन तब नहीं डरता जब किसी का बेड़ा पार हो जाता है। तो आज का जो विषय था हमारा पुराना समय और कनक भवन, अयोध्या का कनक भवन। तो अयोध्या का कनक भवन कैसे रहा इस बारे में बातचीत रहेगा, लेकिन उससे पहले पुराना समय कैसे रहता था उसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा, इसके बाद रहेगा विषय की ओर बढ़ेंगे आगे। तन ढकने को कपड़े न थे, फिर भी लोग तन ढकने का प्रयास करते थे। आज कपड़ों के भंडार हैं, फिर भी तन दिखाने का प्रयास करते हैं। समाज जो सभ्य हो गया है, जो समाज आजकल का वो थोड़ा सा अलग हो गया है, और उस हिसाब से ये कविता के माध्यम से समझाया जा रहा है। समय पुराना था, आवागमन के साधन कम थे, फिर भी लोग परिजनों से मिला करते थे। आज आवागमन के साधनों की भरमार है, फिर भी लोग न मिलने का बहाना बनाते हैं। समय जो सभ्य हो गया है।
1: तो राजेंद्र जी, जैसे कि अभी आपने कह रहे थे कि पहले समय, जरूर समय बदल गया है, और ये भी हमें जानना है कि समय के साथ साथ कुछ कुछ चीज में भी तरक्की होता है ना।
0: हाँ,
1: और कुछ कुछ चीजें जो अब नया फैशन आ गया है, आजकल जींस जिसमें होल नहीं है वो कोई नहीं खरीदते।
0: हाँ,
1: शांता जी भी नहीं खरीदता
0: ना, कोई नहीं
1: ना। तो जीन्स जो हो और जिसमें छेद ना हो,
0: हाँ,
1: तो वो नहीं बिकेगा, तो वो भी तो नहीं चलेगा ना।
0: ना,
1: तो जरूर संदेश हमारा ये है कि पहले जो नहीं था तो लोग अपना और बदन के लिए इतना व्यवस्था कर लेते थे, पर आजकल ये जो हो गया है कि फैशन ऐसा बन गया है जिसे जा करके बस कैसे कहा जाए इसे, कि शरीर दिखाने के लिए। कि
2: अगर हम सोचे देखे तो पहले जिनके पास कपड़ा नहीं होता था, गरीब जो होते थे, तो वो फटे पुराने बस पहन लेते थे। तो ये विज्ञान लोग जो है ना, जो डिजाइनर लोग हैं, वो जाकर वही सब चीज लेकर और यहाँ फैशन में डाल दी। तो कैसे कहे कि धनी वाला गरीब है या गरीब वाला गरीब है,
1: ये एक मुश्किल बात हो जाता है कि धनी वाला गरीब है या गरीब वाला, कैसे आपने कहा कि वो
2: गरीब वाला गरीब है।
1: हाँ, तो सोचने की बात हो जाता है। राजेंद्र जी।

0: हमारा जो ये पुराना समय के बारे में आपने कुछ छेड़ी दिए है, तो जरूर आगे बढ़ते हैं कि क्या संदेश और है।
1: संदेश है कि समय जो पुराना था, घर की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, आज की बेटी पड़ोसी से ही असुरक्षित है। समय सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, लोग नगर मोहल्ले के बुजुर्गों का हालचाल पूछते थे, आज माँ बाप तक को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। समय जो सभ्य हो गया है।
0: समय जो सभ्य हो गया है और माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, तो ये तो जरूर एक सोचने वाला बात है। पर क्या हम माँ बाप तथा अपने वृद्धों को और वृद्धाश्रम में डालने से और बढ़िया होता है या उसके और खराबी होता है?
1: खराब ही होता है मार बाप को वृद्धाश्रम में न चाहे डालना, उनका सेवा सत्कार अपने घर में ही चाहे करना, क्योंकि वो देखेंगे अपने परिवार को तो वो और लंबे समय तक जिएंगे और अच्छे से रह सकते हैं। जब वृद्धाश्रम में जाते हैं तो वहाँ एकदम अकेले हो जाते हैं और उनको मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगता होगा।
0: राजेंद्र जी, ये बात भी हो जाता है कि आप जब अपने घर से कितने यहाँ हॉलैंड में एक ऐसा देश है, यहाँ इतना ज्यादा तादाद में व्यवस्था किया गया है ना कि आप अपने बुढ़ापे पे भी अपने घर से रह सकते हो। और काफी जैसे का बोले उसे शांता जी आन लोइन वोनिंगा तथा और वहाँ आप अपने अपने से खाना बना सकते हैं और अपने को सुरक्षित रह सकते हो। पर ऐसा भी है कि कभी काल के जो हमारे यहाँ के आश्रमों बनाया गया है, जैसे हॉलैंड में, भारत में तो कुछ और तरीका से है, पर वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रखा जाता है, कुछ कुछ एक्टिविटाइट रखा जाता है, जिसमें हमारे पुरखों तथा हमारे माँ बाप लोग और पिताए जा करके उसमें भाग ले सकते हैं ना, तो उसमें उसका दिल भी बहक तनी हल्का होता कि नहीं?
1: हाँ, हल्का होता है।
0: दख बस्तेदेन उसे कहते हैं। और खास करके हॉलैंड में जितना व्यवस्था बनाया गया है हमारे बूढ़ों के लिए, अब वैसे तो यहाँ बूढ़ा किसी को कह देना, बुजुर्ग को किसी को कह देना, तो वो दूसरे आंखी से देखने लगता है। हाँ,
2: समय बदल गया।
0: तो पर फिर भी कहने के तात्पर्य यह है कि जैसे कि हमारे बस आदि में पहले बस होते थे जिसे हम दो सीढ़ी तीन सीढ़ी चढ़ के अंदर जाते थे, आजकल हमें हमारे बस ऐसा बना दिया गया है, हमारे त्रोतवार ऐसा बनाया जाता है जिसे हमें बिल्कुल तकलीफ ना हो। हॉलैंड में ऐसे बनते जा रहा है व्यवस्था और बढ़िया होते जा रहा है। पर खास करके ये है कि गत दिनों कुछ व्हाट्सएप बरेख आया राजेंद्र जी हमारे पास, व्हाट्सएप बरेख आया, उसमें कहा कि भाई मैंने आज रात में बहुत देर से घर से निकला, तो मुझे ये लगा कि ये कह क्या रहे हैं, तो उन्होंने ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम को सुन करके और अपना बदलाव लाया है कि उन्होंने ये कहा हमसे, क्योंकि हमने समझा नहीं था, तो जरूर उनसे प्रश्न किया कि बात क्या है भाई, तो उन्होंने कहा कि रोज जो 6000 फुट स्थापन कहते हैं शांता जी, जो रोज करते हैं, तो रोज उन्होंने ऐसा किया। और आजकल हमारे शांता जी तो 9000 रोज रखते हैं ना।
1: ओ शांता जी, थोड़ा ज्यादा करें,
0: थोड़ा से ज्यादा, पर ये जवान है और ज्यादा तादाद में कर सकते हैं। पर राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम में हम सब और आगे जो पुराने बातें हैं और फिर हमारा विषय जो आज है, विषय अयोध्या के कनक भवन, उस ओर छलांग लगाएंगे।
1: जरूर बढ़ते हैं, एक सुंदर सा जो गाना है, मुहे रंग दो लाल।

0: मोहे रंग दो लाल, बहुत ही बड़ा बढ़िया जो मनमोहक गाना रहा, बड़ा अच्छा, सब लोगों को अच्छा लगा होगा। बात चल रही थी समय जो पुराना था, खिलौनों की कमी थी फिर भी मोहल्ले भर के बच्चों के साथ खेला करते थे। आज खिलौनों की भरमार है पर बच्चे मोबाइल की जकड़ में बंद हैं। समय जो कम था, समय जो सभ्य हो गया है।
1: ऐसे सूरीनाम में हम बताए ना, सूरीनाम में तो जैसे कहते हैं ना, कैसे कहते हैं, स्मेरोली के ब्लैक, पहले स्मेरोली ब्लैक में आते थे।
2: हाँ
1: संजय जी, तो हमने देखे थे कैसे हम भाई, मेरे भाई लोग उसको गड़गाड़ी बना रहे थे, उन समय हम गड़गाड़ी बना रहे
2: थे। स्टीर होते थे ना?
0: हाँ, टायर होते थे, एक और ऐसे बांध,
1: लकड़ी के साथ है और टायर उसमें बांध देते रसरी, ताकि उसको लिंक्स या रैक्स घुमा कर और चला सकते थे। ऐसे ऐसे हम लोग बना कर और उससे खेलते थे।
3: भारत में भी ऐसे था।
1: हाँ, और कि तो
3: टायर होता है बांध, हाँ, उससे खेलते लकड़ी करके,
1: एमर के ढपना ऐसे जब मिल जाए भी तो उसको बनाकर स्टीयर बनाकर और आंगन भर में ऐसे घूमते थे गाड़ी की तरह।
2: राजेंद्र जी, आपको शायद नहीं पता होगा, हम लोग बच्चे जब थे ना
0: जी,
2: तो सभी के घर से गाय होते थे ना, गाय बकरी होते थे। पर गाय बकरी भानने से पहले हम लोग बोतल गटाई में भान के भानते थे, चलाते थे ना। हाँ। तो वो भी समय था।
1: लुका चोरी हम खेल रहे थे भी, एलक खेले थे, जूल खेलते थे उन समय पर। पर आज के बच्चे से तो जो पूछ तो वो क्या है उसको पता नहीं है।
4: भारत में भी बच्चे जाते गुल्ली डंडा, पिट्ठू गरम, लुका छुपी, सब ऐसे खेल खेलते थे। और लड़के ज्यादा कंचे,
0: वो तो आज भी रहता है ना।
4: हाँ जी, कंचे हैं लेकिन अब थोड़े दूसरे तरीके से खेलते हैं, पहले दूसरे तरीके से खेलते, गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा कहाँ खेलता है, कोई नहीं खेलता।
0: खेलते हैं, मैं तभी भी खेलता हूँ गाँव में जब जाता।
4: हाँ, खाली गाँव में रह गए, बाकी शहरों में नहीं, शहरों में तो आजकल बच्चे नहीं खेलते।
0: समय पुराना था, गली मोहल्ले के पशुओं तक को रोटी दी जाती थी, आज पड़ोसी के बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। समय जो सभ्य हो गया है। समय पुराना था, पड़ोसी के घर में आए रिश्तेदार का भी पूरा परिचय पूछ लेते थे, आज तो पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। समय जो सभ्य हो गया है, वो आ रहे आधुनिक समय, क्यों ना हम एक सुंदर सा, संजय जी आप क्या बोलते हो समय के बारे में?
2: मैं तो बस यही कहना चाहूंगा राजेंद्र जी की समय के अंतर्गत क्यों ना एक सुंदर सा पिटारा शांता के जो लेकर आए है, आज काफी भारी है।
1: संजय जी, आप जैसे समय के बात करते हैं ना, समय के बात, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि समय बदला या हम सब बदले।
4: समय तो वही है शांता जी, इंसान बदल गया।
1: हाँ वही, मैं मेरे दिमाग में ये हमेशा चलता है, हम हमेशा कहते कि समय बदल गए। समय तो वही है क्योंकि सूर्य अभी वहीं से उगता है, चंद्रमा वहीं से उगता है, अभी तो वही समय पे सुबह होते हैं, वही समय शाम होते हैं, तो समय कैसे बदला। हाँ
0: शांता जी ने याद दिला दिया कि सूर्य वहीं से उगता है, चंद्र भी वहीं से उगता है, तो इसी उपलक्ष्य में एक गाना भी है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सूरज बदला चांद ना बदला लेकिन बदल गया इंसान। तो इंसान बदला है, सूरज चांद तो अपनी जगह है और प्रकृति सब वैसी हुए, केवल मनुष्य जो इंसान है वही बदला है।
2: तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, और फिर गीत के बाद अभी हम सब छलांग लगाने वाले है कि अयोध्या की कनक भवन
0: जी, जरूर
2: ऐसा भवन, उनके बारे में काफी जानकारी यहाँ हमारे विशेषज्ञ लोग खोज करके रखे हुए है, तो अभी हम सभी सुनने वालों को लिए वो जरूर रखने वाले हैं। पहले एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे
0: जरूर।

0: जीना यहाँ मरना यहाँ। फिर तो बबली जी, आप कौन सा संदेश हमारे लिए रखे?
1: संदेश का विषय है प्रबंध।
0: तो प्रबंध बस सुना दीजिए हम सबको। प्रबंध के मतलब बोले तो
1: इंतजाम।
0: इंतजाम,
1: हाँ जी।
0: तो इंतजाम की कितने चीजों का हो सकता है ना राजेंद्र जी? प्रबंध जो हो गया तो आपको क्या और सुनाना है?
2: खरेखर
0: तो प्रबंध, शांता जी कहते हैं कि प्रबंध यानी कि आलस इशार खरेखर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब प्रबंध हो गया है तो बबली जी को सुनाना क्या है?
1: हाँ जी, तो अब मैं सुनाती हूँ। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते, और देर रात तो आते ही नहीं थे।
0: देर रात तो आते नहीं थे। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर ये संदेश जो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं आगे की ओर बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में हमारा विषय जो है आज का विषय अयोध्या के कनक भवन, उस ओर छलांग लगाने वाले हैं। पर बबली जी, अगर आप का कोई इतराज ना हो तो हम एक सुंदर से गीत के ओर बढ़ेंगे, फिर ये कार्यक्रम ये संदेश को आगे बढ़ाएंगे।
1: हाँ जी जरूर, पहले गीत सुन लेते हैं।
2: जरूर।

0: राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई हरी क्या पाला, शोर मचाऊं गली गली। कहने का भाव ये है कि जो राम नाम के हीरे मोती हैं उसको भजना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, और गली गली में आप कहीं भी कर सकते हो। तो हरी का प्याला जो है एकदम अमृत समान है, अगर आप चाहे तो उसको ले सकते हो, न चाहे तो आपके ऊपर। बबली जी, आप कुछ सुंदर सा उसकी तरफ बढ़ रहे थे।
1: हाँ जी।
0: तो जरूर आपका स्वागत।
1: इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे।
2: तो बबली जी, थोड़ा से फिर रिफ्रेश कि किसके बारे में बात हो रहा है, कि एक एक एक एक पिता जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं ना।
1: हाँ जी।
2: पिता जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, और पिता कि कभी काल के और मुसीबत आते हैं तो बच्चे उन्हें और सहयोग देते हैं, पर कभी कभी गोहराते रहते हैं पिता और बच्चे, जो सहयोग में थोड़ा से गड़बड़ हो जाता है ना।
1: हाँ जी, शुरू शुरू में बच्चे आते हैं रात को, और जब धीरे धीरे रात में बच्चों ने आना बंद कर दिया,
2: ऐसा
1: जब पिता आवाज लगाते हैं। हाँ जी।
2: तो आगे संदेश क्या है बबली जी?
1: अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था।
2: ऐसा होता है राजेंद्र जी, बुढ़ापा होने से कम दिखते?
0: हाँ, धीरे धीरे नजर कम हो जाता है, पैर घुटना में चलना कम हो जाता है,
2: ऐसा
0: एक उम्र के अनुसार सब रहता है।
2: तो आगे ले चले बबली जी।
1: हाँ जी। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया। एक रात को उनको
2: हुआ क्या, तो जो लड़का आ रहा है उनके मदद करते हैं, ऐसा वो उसी का लड़का था?
1: हाँ जी, ये तो अभी आगे पता चलेगा।
2: अच्छा।
1: एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और एक कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं।
2: यानी कि वो बूढ़ा आदमी ने, वो जो व्यक्ति उनका मदद करते थे, वो लड़का के रूप में जो बिल्कुल उसकी लड़का की तरह, और वो उनके हाथ पकड़ के पूछते हैं कि ऐसा तो मेरा बेटा नहीं है, पर आप कौन हो?
1: हाँ जी,
2: ये प्रश्न
1: रखते हैं। हाँ जी, प्रश्न करते हैं। तो फिर अब वो उत्तर देंगे। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं, यदि मुझे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रबंध हैं, आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरे नाम का जाप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रबंध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं काट रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रबंध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रबंध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य आपके प्रबंध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको यह प्रबंध भुगतने फिर से आना होगा, यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रबंध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रबंध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रबंध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं, तीव्र प्रबंध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रबंध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रबंधों को मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रबंध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर।
2: तो ये सुंदर संदेश जो बबली जी ने अपने ओर से रखे, और राजेंद्र जी घड़ी देख रहा हूँ कि हमें उस ओर बढ़ना है जहाँ की हमारे परप्लेक्सिंग है, हम सबको कहते हैं कि न्यूज और कमर्शियल्स।
0: जरूर जरूर
2: कमर्शियल्स
0: जरूर जरूर।
3: अद्वकातन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
4: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hemelstaande Radio. Radio Faro.
7: Digitale radio. Van FM.nl.
8: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
9: Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
10: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: बहुत ही सुंदर जो गाना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही नगमे सब लुटाता रहूं। तो संजय जी, आप क्या कहते हैं, साथ देने का वादा करें तो?
11: तो मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि एक बार जो मैंने शुरुआत में कही तो वो मैं फिर एक बार कहती हूँ कि कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। तो ब्रेक से पहले तो बबली जी ने कहा कि जो आप भुगत रहे हो वो आपका प्रारब्ध है। तो हम भी आज के दौर में भी देखें तो जो हमारे जो हम पिछले कर्म कर चुके हैं वो आज में हम भोगते हैं, और ऐसे ज्ञान पाते ही जो हम उसमें ये सुधार कर सकते हैं तो भी हम अपना सुधार कर ले, ताकि हमारे ऊपर जो विपत पड़े तो यही समझे कि इससे हम भोग ले, भोगने के बाद जो हम मर जाए तो उसके बाद जो हमारा जन्म हो ये पर्वत ये बात जो अपने आपने उसके अनुसार में बात करी तो जीवन शायद अलग से होगा।
1: वो चीज दोबारा नहीं भुगतनी पड़ेगी।
11: वो भी दोबारा नहीं भुगतनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे सुनते हैं ना, ऐसे ऐसा प्रवचन, ऐसे ऐसे बातें जो हम सुनते हैं, तो हमको भी हिम्मत मिलता है कि हमारे ऊपर जो परेशानी आते हैं तो ये एक कारण होगा, और इससे जो हम घबरा जाए तो हमारा जो राह है जो भटक जाएगा, हम खुद भटक जाएंगे। और ऐसे ऐसे बात जो सुनकर हम अपने को एक विश्वास थान ले कि ना ये अंधेरा है, कुछ समय के लिए वो जरूर से थम जाएगा, उजाला आएगा, ऐसे हम देख रहे हैं।
2: शांता जी अपने ओर से जो सुंदर संदेश हम सबको सुनाए, जरूर दोस्तों इसमें मैं ये जरूर जोड़ देना चाहता हूँ कि उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। हमारे साथ राजेंद्र जी जो एक वृतांत दिल्ली शहर में हुआ था और उसे बांटने वाले हैं, तो राजेंद्र जी क्यों ना हमें वो वृतांत के ओर आप ले चले।
0: वृतांत का जो शीर्षक है वो है अपना काम खुद करें, आत्मनिर्भर बने। बात एक समय की है जब दिल्ली से गोवा की उड़ान एक सज्जन जा रहे थे, साथ में उनकी पत्नी भी थी। सज्जन की उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 के पार ही होगी। पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, सज्जन बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही पत्नी ने खाने का कुछ सामान निकाला और पति की ओर किया। पति कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों आराम से राजमा चावल खा रहे थे।
2: राजेंद्र जी ये एक विशेष बात हो जाता है ना
0: जी,
2: कि भारत का जब आप जहाज यानी कि प्लेन से सफर करें तो ज्यादा तादाद में 1.5 घंटा में पहुंचा देते हैं ना।
0: हाँ, 1.5-2 घंटा।
2: पर उसमें ये भारत के एक ऐसा पॉलिसी है कि चाहे जोन भी एजेंसी रहे,
0: हाँ,
2: वो 1.5 घंटा में आपको गर्म खाना भी खिला देते।
0: हाँ, खिला देते।
2: यहाँ पर तो चाय भी नहीं पूछते जो
0: डोमेस्टिक
2: किया था, जो यहाँ से यूरोप के देश में
0: अलग अलग रकम रहा हर जगह का काम धाम। तो राजमा चावल जब वो खा रहे थे तो कोल्ड ड्रिंक में भी उन सज्जन ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल का ढक्कन खोलना शुरू किया तो ढक्कन उनसे खुला ही नहीं। सज्जन कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और मैं लगातार उन्हें देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो शिष्टाचार बस मैंने कहा, लाइए मैं खोल देता हूँ। सज्जन ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बोले, बेटा जी ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रश्न भरी निगाहों से उन्हें देखता रहा। ये सज्जन ने कहा, बेटा जी आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। पत्नी भी पति की ओर देख रही थी, जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला, लेकिन सज्जन उसे खोलने की कोशिश में लगे रहे और बहुत कोशिशों के बाद अंततः उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में ज़िंदगी का एक सबक मिला। सज्जन ने मुझे बताया, हमने एक नियम बना रखा है, अपना हर काम खुद ही करना है। घर में बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, लेकिन अपनी रोज की ज़रूरतों के केवल पत्नी ही मदद कर लेते हैं। पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ, तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा, ये काम इससे करवा लूं, वो काम उससे, फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पांव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, लेकिन जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। क्यों ना एक सुंदर सा नगमे की ओर बढ़े।
2: जरूर राजेंद्र जी, सुंदर सा नगमा की ओर हम लोग को जरूर बढ़ना है। और ये जरूर कहना चाहूंगा अपने सभी सुनने वालों को कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। सुनने वालों, आप सुनते रहना, ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और हमारे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश का बस यही लक्ष्य है कि हमारे जीवन के ज्योति जो जल रहे हैं उसमें थोड़ा सा और प्रकाश आ सके। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: हाँ जाओ मेरे राम, बहुत ही जो सुंदर नगमा था, बहुत अच्छा ही लगा सब लोगों को। आप क्या कहते हैं शांता जी इस नगमे के बारे में?
1: ये गीत और भजन जो चलता है ना, आप इस पर जब गौर करें तो इसमें बहुत सारे संदेश आए। हाँ, सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनना बल्कि शब्द जो उसमें प्रयोग किया है, वो जग शब्द गाना के रूप में जो उसमें गाए है, अगर उसको आप सुनेंगे तो उसमें आप बहुत सारे लाभ निकाल सकते हैं।
2: राजेंद्र जी, आज का विषय जो हमारे है और उस ओर छलांग लगाना है हम सबको, और ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने सभी सुनने वालों को कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो हम छलांग लगाते हैं अपना विषय की ओर, विषय की ओर जो आज का है उस ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कनक भवन जो अयोध्या शहर में ना राजेंद्र जी।
0: हाँ, कनक भवन से पहले अभी हम जो छलांग लगा चुके हैं
2: वो अभी पार करना है। वो जूस का बोतल खुला कि नहीं खुला?
0: खुल गया जूस का बोतल।
2: मामा का बोतल नहीं खुला?
0: हाँ, मामा भी अपना जूस का बोतल खुद ही खोल लेता है,
2: आजकल खोल लेते हैं।
0: हाँ,
2: तो मामा का बोतल खुल गया दोस्तों, और अभी संदेश जो थोड़ा से बाकी है हम सब उस ओर बढ़ते हैं, फिर छलांग लगाते हैं विषय के ओर आज के।
0: सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए, एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा, फिर मन हमेशा यही कहेगा हम गोवा जा ही रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे हम, महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले आपको दिक्कत होगी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में बंद कर लेंगे। सारी जिंदगी खूब काम किया, अब सब कुछ बेटों को देकर अपने लिए महीने के लिए पैसे तय कर रखे हैं, और हम दोनों उसी से आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देता है, टैक्सी घर पर आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर ही टैक्सी आ जाती है, होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है, स्वास्थ्य व उम्र के अनुसार सब एकदम ठीक है, बस कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, लेकिन थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल जाती है। मेरी तो आंखें ही खुल गई, मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ही पलों में मैंने पूरे जीवन की फिल्म देख ली, एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। दोस्तों, जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, जहाँ तक संभव हो अपना काम स्वयं ही करें, जैसे कि हमारे मामा जी करते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, अपना गाड़ी लेके जाते हैं, दूसरों को भी घुमाते हैं, और इस प्रकार उनका जो ज़िंदगी है अभी पूरा 25 बरस और बचा हुआ है।
2: ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही है हमारा भाग्य लिखते हैं। दोस्तों, हम अब छलांग लगाने वाले हैं जो आज का विषय, राजेंद्र जी विषय जो अयोध्या का कनक भवन, छलांग लगाते हैं फिर एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय बड़ा बलवान है।
0: समय बड़ा बलवान है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम बढ़ते हैं श्री अयोध्या जी में कनक भवन की ओर। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है, जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे, श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धरता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर हैं जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी एवं शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। चूँकि सबके सब फक्कड़ संत थे, तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिया को, जिसका नाम था पलटू बनिया, भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर

0: कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब यह बात पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पीकर रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री रामचंद्र जी राम प्रसाद जी नित्य करीब एक घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे।
1: राजेंद्र जी, भजन सुनाने से पहले पीताम्बर उड़ाया जाता था, तो पीताम्बर माने तो?
0: पीताम्बर मतलब एक पीला वस्त्र।
1: पीला वस्त्र,
0: हाँ। तो राम प्रसाद जी एक घंटा भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। क्यों ना एक सुंदर सा कनक भवन के दरवाजे पर पड़े रहो का भजन चलाया जाए।
1: चला देते हैं राजेंद्र जी,
0: और हमारे मामा जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको भी प्रतीक्षा है।

0: कनक भवन का जो सुंदर सा भजन रहा, बहुत ही अच्छा, मनमोहक रहा। कनक भवन दरवाजे पे पड़े रहो, यानी कनक भवन में भगवान राम और सब राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता जी और हनुमान जी रहते थे, इसलिए कहते उसके भवन में पड़े रहो तो भगवान के चरणों में आप सदा रहोगे, ये संदेश रहता है। तो क्यों ना हम आगे का संदेश अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी, राम प्रसाद जी की बात चल रही थी, वो सोने चले गए और धीरे धीरे रात बीतने लगी।
1: राजेंद्र जी, ये बात हुआ कि वो कनक भवन जो एक मंदिर है ना,
0: हाँ,
1: एक एक एक तीर्थ स्थान,
0: हाँ वहाँ पे है ना,
1: तो
0: अयोध्या में,
1: ये कहने के तात्पर्य ये संदेश ये देते हैं कि उस दिन कुछ चढ़ावा हुआ नहीं और उन्होंने बनिया के पास अपने व्यक्ति को भेजे ताकि, हाँ, कुछ उधार में लेता है।
0: हाँ, एक दिन चढ़ावा ना चढ़ा तो उसने सोचा कि आज नहीं आया तो कुछ उधार लिया जाए, लेकिन जो बनिया रहा वो उधार ना दिए, तो सब लोग साधु संत लोग दिन में भी भूखे सो गए, रात को भी भूखे सो गए,
1: पानी पी कर सो गए,
0: पानी पी कर सो गए।
2: ये चमत्कार भगवान ने किया,
0: ये चमत्कार सब भगवान ने किया। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया, वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया।
1: अरे बाप, राजेंद्र जी, क्या भूत प्रेत आ गया वो बनिया घर का
0: है? जब आवाज सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोल। उसने हड़बड़ा कर खींचते हुए दरवाजा खोला, सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता है कि चार लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि न चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है, ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था, 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रसन्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई, हाय आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूं तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे, इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दीजिए करेंगे, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाए, वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहे सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए।
1: लो, पलटू बनिया का मन भी लो गए। तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं, फिर आगे के कार्यक्रम।
0: पलटू बनिया का मन भी लेके चले गए बच्चे,
1: पलटू बनिया का मन भी गया
0: गया।

0: बहुत ही सुंदर जो अभी हमने गाना सुना है वो दो पल की दास्तां तो और तुम चले हम कहां। तो जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे कि हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा और कष्ट उठाया सो उठाया मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन न हुआ और इस बनिया को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा वे तो त्रिभुवन के नाथ थे, अरे मैं तो चरण भी न छू पाया। अब तो वो दोनों ही लोग बैठकर रोए। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई, आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और वह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुई। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए और रात में शयन के समय जब वही भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे किंतु मूर्छा अवस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहे या तो ये अभाव ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निवारण किया ऐसे ही हमारा भी कर दे जय। इस प्रकार से पलटू दास जी की जो कहानी रहा और हमारे जो भूतपूर्व डायरेक्टर रहे गांधी सेंटर के वो कुछ अभी कहना चाहते हैं।
1: राजेंद्र जी बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर जी जो
0: निर्मला जी जो हमारे भारत से प्रोफेसर जी हैं हमारे डॉक्टर निर्मला शर्मा जी, वो गांधी सेंटर के डायरेक्टर एम्बेसी ऑफ इंडिया में पहले 3 साल अपना कार्यक्रम पूरा करके यहाँ से भारत गए हैं और अब वो अपना एक संदेश हमें देना चाहते हैं भारत से ही दूरभाष की ओर से।
1: तो निर्मला जी आपको स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो में और जरूर आशा ये रखता हूँ कि कुछ छोटा सा संदेश आप हम सबको सुनाए।
2: संदेश तो नहीं, सब प्यारे बहनों और भाइयों जो सुन रहे हैं और मेरे प्यारे भाइयों जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्यार। इतना खूबसूरत ये फहोर रेडियो का प्रोग्राम है, इतनी भारत से इतनी दूर तक ये फैला हुआ है और पुराने पुराने हिंदी के भारत के इतने सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं आपको हमेशा। मैं बहुत खुश हूँ फहोर रेडियो से कि ऐसा लगता है जैसे भारत हम दूर नहीं आए थे, जब भारत में ही है जब रेडियो स्टेशन में बैठते हैं। इतने सुंदर सुंदर गीत सुनते हैं आप लोग और पेश करते हैं और अपनी इच्छा पेश करते हैं कि ये सुनना चाहेंगे, इससे छाती एकदम गर्व खुशी से फूल जाती है। इनफैक्ट इतना अच्छा लगता है कि पहुँ रेडियो में पुराने पुराने भारतीय गीत फिल्मों के गीत जीवित हैं। फहोर रेडियो की तरफ से मैं फहोर रेडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सब जो फरमाइश भेजते हैं उन सबको आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एंजॉय कीजिए और हिंदी गाने सुनते रहिए जो क्लासिक है, गोल्ड है इंडिया की, द गोल्ड ऑफ इंडिया, द ओल्ड सॉन्ग क्लासिक सॉन्ग्स, इसको सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को भारत से ही अपना पूरा संदेश भेजा। यहाँ पे जो हमारे 188 देशों में कार्यक्रम सुनाई देता है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का, रेडियो के और इंटरनेट के माध्यम से सब लोग आपको पूर्ण रूप से अच्छे से याद भी करते हैं। बहुत सारे लोग आपको अभी भी गांधी सेंटर में आते हैं मिलने के लिए, कुछ लोगों को पता नहीं कि आप चली गई हैं भारत में, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी नीदरलैंड आएंगे और सब लोगों से फिर दोबारा से मिलेंगे। इसी के साथ आपका फाहून हिंदुस्तानी रेडियो में बहुत आभार और प्रकट धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: हमारी जो डायरेक्टर रही गांधी सेंटर में पहले, उनका अभी भारत से एक संदेश सब लोगों ने सुना, और उसी संदेश का जो हम उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में जो बताया कि नीदरलैंड में भी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कहीं दूसरे देश में, क्योंकि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो इतने अच्छे से कार्यक्रम और अपना जो कल्चर का कार्यक्रम करता है उससे किसी को भी महसूस नहीं होता जो फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से जुड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार हम कार्यक्रम करते रहेंगे और इसी कार्यक्रम को आगे चलाते रहेंगे।
1: तो हम राजेंद्र जी वही गीत की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं।
0: हाँ, गीत की ओर बढ़ते हैं
1: जिसका नाम लागी छूटे ना।
0: लागी छूटे ना अब तो,
1: और लागी छूटे ना अब तो सनम।
0: तो जैसे ही हमारा ये गाना बजता है लागी छूटे ना अब तो सनम, तो हमें पता चल जाता है सब लोगों को कि हमारा 2 घंटा पूर्ण हो चुका है।
1: और आज की कार्यक्रम जैसे कि सुनने वालों आप सभी ने सुने कि अयोध्या का कनक भवन, और राजेंद्र जी ये बात भी हो जाता है अयोध्या में कोई एक व्यक्ति है जो कितने सालों कितने अवस्था को हुए थे ना।
0: हाँ, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर है और उस मंदिर अभी तो बड़ा विशाल रूप में बन रहा है। तो पुराने जमाने से बहुत, जब त्रेता युग से वहाँ पे भगवान राम का मंदिर है, लेकिन अब बड़ा विशाल रूप में बन रहा है। उसके लिए सब लोगों ने पूरा दुनिया से सहयोग भी दिया और अभी बहुत सारे लोग अयोध्या देखने के लिए जाते हैं। जब मंदिर पूरा बन जाएगा तो और भी ज़्यादा लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। और हमारे जो हॉलैंड के, सूरीनाम के, गयाना के, मॉरिशस के लोग हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा रुचि रहती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो हमारे सब भारतीय ही हैं और अपना कल्चर साथ लेके आए हैं, और भारत को तो लोग ऐसा मानते हैं कि जैसा उनका घर ही है। तो ज़रूर सब लोग उस तरफ चलेंगे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ते हुए, बबली जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: नहीं, लागी छूटे ना वो चला देते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि
0: जी समय पे हमें सब काम करना चाहिए। समय, समय की बात, समय बड़ा बलवान, अर्जुन लोटा भीलों ने वही धनुष वही बाण, तो समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हम समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: में?
1: दीवाना है तेरा, एक बार फिर कहूंगी कि कर्म अच्छा हो, कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है। ऐसा इंसान, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। आप सभी फाउन रेडियो के सुनने वालों, हार्दिक से धन्यवाद साथ देने और सुनने के लिए। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

लागी छूटे ना अब तो सनम, छूटे तो ना लेकिन अब समय का हमारा जो समय हो जाता है वो तो छूट ही जाएगा, तो हमें समय पे अपना काम पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो फाउन हिंदुस्तानी के, जो कि इस प्रकार से हमें बड़े प्रेम से सुनते हैं अपना समय निकाल कर, और उनको कुछ ना कुछ जो संदेश हम लोग देते हैं उनके अपने जीवन में लाने से हो सकता है उनको कुछ फ़ायदा होता होगा, और उसको चाहे कंटिन्यू ऐसे ही हमको सुनते रहिए। तब तक के लिए अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के हमारे कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता केमाई, बबली आसरा जी और राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे, और भारत देश से प्रोफेसर निर्मला शर्मा जी जो अपने ओर से भारत से सहयोग दिए कार्यक्रम में। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं हूँ आपका सेवक संजय। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

द मैरी मैन विद बिग बाम्बू, आपको याद है दोस्तों, बीते हुए दिनों में सुनाम, जिसमें जब कैरमस लगता था करम का पैक पर, तो वहाँ लोग जाकर रेह में खड़ा होकर टिकट खरीदते थे। सुंदर पोपो आते थे, त्रिनिदाद टोबैगो से आते थे गवैया, और ये गीत हमेशा कैरमस पे गाया जाता था। द बिग बाम्बू हम सब मिलकर सुनेंगे।

बिग बाम्बू द मैरी मैन के आवाज में भी आपने सुना, तो सबकी बार हम चला जाते हैं सुरनाम देश। और सुरनाम देश के कौन गोया है, मिस्टर रोमियो दंग कमला कॉम लेट वी गो।

हाय हाय कमली कम लेट वी गो नो बाबिल नो बॉडी लाइक टू गो। अब की बार आशनी माता दिन अपन आशनी है दोस्तों हॉलैंडेस का और आशनी फरमाएगा तोरे बंगले आशनी माता दिन के आवाज में।

आश्री माता दिन नजर लागे तेरे बंगले पर। दोस्तों हमाम स्टोरीज, हमाम स्टोरीज ब्रदर लिव द, क्या फरमाएंगे खुद सुनिए।

0: नवा राय
1: राय नवा राय नवा राय एक्सक्लूसिव वॉल्यूम 14 लाठी ना टूटे फसील के आवाज में
2: सुनिए रे हेंड्रिक्स चूज़ वा
3: आई बॉय नाउ इट इज़

है, ऐसा ना हो कि लाठी टूट जाए और सांप न मरे तो क्या होगा दोस्तों? सांप आपको लपेट लेंगे। नो मर्सी चटनी मैच।

0: पronto आर्या, क्यों बुलाया मुझे?
1: सैम, कई गैरकानूनी एक्टिविटीज हैं तुम्हारी, काले सफेद बिजनेसेस भी हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारा अपना निजी मामला है।
0: बड़ी मेहरबानी आपकी।
1: लेकिन अब इंडिया के दुश्मनों से मिलकर आईएसआई की मदद करके तुमने मेरे निजी मामले में अपनी गर्दन डाल दी।
0: कहानी बड़ी सनसनीखेज है तुम्हारी, अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते? ये टहलाना छोड़ो।
1: तो सुनो, I'm Captain Aditya Arya, Indian Army Special Group Force.
0: तो देश के लिए जान देना सीखा है तुमने?
1: नहीं सर, जो भी सर देश के खिलाफ उठता है उस पर गोली मारने की ट्रेनिंग ली है मैंने। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, अपना सर बचा कर रखना।
0: सर तो बहुत से उठ रहे हैं इंडिया के खिलाफ, गिनती भी नहीं कर पाओगे। बेहतर होगा अपनी गोलियां बचा के रखो,

हर एक काम जो रेडियो के सिरे कर आना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फा और हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यूज सी फन तक 3 से 5 2 8 2 8 फी सी पर आपको तार करना है।

के दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

nieuw song met Pitch Karunga Dosto 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है गाना बोल है मेरे सनम आया है हम सब मिलकर सुनेंगे

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप

यार है नया एहसास है आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाज़ों में। मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

कक्कर हूं मैं, क्या बात है, हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

सेलेक्टा बीट्स शो बैंड, सेलेक्टा बीट्स शो बैंड बॉबलिंग मैशअप। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं

आओ शो मी दे ठुमका, शो मी दे ठुमका, तू झूठी मैं मक्कार। रणधीर का उसके बाद हम चलते हैं नौ टंकी कोड इंस्पेक्टर अविनाश के ओर हम चलते हैं। और नौ टंकी में क्या होता है दोस्तों, आओ सुना जाए तू।

और सैया जब मुझे बुलाएंगे तो कैसे हम नहीं जाएंगे, मैंने भी रान रखी है, तू झूठी है, तू मक्कार है, रणबीर शारदा प्रीतम सीरिया बता रहे है देविया का अमिताभ के साथ।

0: और हम भी यहाँ पर पानी पी रखी है। हमारे यारो क्या लोगो तुम, हम चलते गीत को जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है।
1: चलो चलो चलो चलो, लेट हो गए।

और मेरे जिंदगी में आने को क्या लेंगे तुम। ये गीत गलत गाया गया है कि मेरे जिंदगी में जाने को क्या लोगे, और हकीकत में है उसको कहते हैं कि मेरे जिंदगी में आने को क्या लोगे। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा जिंदगी में आना है तो आपके फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड के बातचीत यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो आपको हम बता देना चाहते। तो इसके बाद हम जाते हैं चुनरिया के ओर, भैया बीबी नंबर 1 के ओर हम जाते हैं।

दूर चुनरिया उड़ गया, अगर चुनरिया उड़ गया तो क्या देखने की मिलेगा, आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। और चुनरिया के बाद हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी प्यार के, जब कभी किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया है तो उस सब के लिए इस गीत को यहाँ से हम चलाते हैं। तो हम यही कहते हैं दोस्तों, दुनिया में धोखा तो कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन जिस जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसके आप बहुत चाहते हैं खास करके, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चाई से रहना, झूठ मत बोलना, उपकर्तस्पेलमेंस और उसमें आपको जीत होगा। जिस दिन आप सच्चाई से सामना करने को ताकत रखेंगे और उस दिन आम से जबर किसी नहीं होएंगे, कभी तुझसे जबर किसी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई पे रहना और अपने चाहने वालों को कभी धोखा मत देना, यानी कि धोखा देना अच्छा बात नहीं है। कभी कभी दिल में इतना चोट लग जाता है कि उसको कुछ दवा और दारू दवा दारू उसको ठीक नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर से प्यार ही ओके अच्छा कर सकता है। दोस्तों तो हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।

बदुआ लेंगे, मुझे लगता है कि एवं बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे, मुझे छोड़ के जाने वाले जा, छोड़ दिया तुझको जिसका भरा हुआ जमीर, हम उसको मार के क्या।

और अच्छा सिला दिया है तूने और दिया है मेरे प्यार को। अगर जब किसी को धोखा देगे प्यार में दोस्तों, तो उसको ये गीत सुनना पड़ेगा। अगर धोखा दिया है तो ये गीत सुनना पड़ेगा। दार इस हेलमाल खीन एक्सक्यूज से फोर फोर दैट ये आश निमान फोर द खेक हैव गाउड अपन धोखा ना दे लो है तो कि उस पे आपको क्या डर है। चोरी करना डर है, चोरी ना करो किसका डर है। इसके बाद हम चलते हैं मिलने की तुम कोशिश जरूर करना। मिलने की कोशिश तुमको जरूर करना है। कुमार शानू आशा जी गीत को आप लोग को सुनाएंगे।

टूट जाता है, लेकिन कोशिश करना हमारे यारों कि वादा ना टूटे, वादा टूटना नहीं चाहिए, और खास करके प्यार के वादा। उसके बाद हम चलते हैं झूमे जो पठान, और वो है शाहरुख खान। झूमे जो पठान, वो है शाहरुख खान और दीपिका।

कौन गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के दीवाना हो गया है तो उस दीवानी के लिए ये गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के ऊपर दीवाना हो गया है तो सब लॉफर्स के लिए ये गीत हम यहाँ से चलाते हैं।

और सांसु का चलना और सलमान खान करिश्मा कपूर उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो दोस्तों। और आगे चला जाए तो कहते हैं तुमसे मिलके दिल का जो हाल किया करे। इस फिल्म में शाहरुख खान सुष्मिता सेन ने काम किया है और

और तुमसे मिलके दिल का हाल क्या करूं। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना की ओर। यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएंगे। इस फिल्म में सनी देओल करिश्मा कपूर ने काम किया है और अलका विनोद फिल्म और ये है अलका याग्निक अविनोद राठौड़ इस गीत को गाया है और मूवी का नाम है काश एंड क्रेडिट्स। सलमान खान सनी देओल इसमें काम किया है। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

और यारा के बाद में हम और आगे को चलते ही तो हमारे यारो हम एक गीत की ओर और बढ़ते हैं। अभी हम आ जाएंगे अलका यांग्निक और अभिजीत का ये सॉन्ग है।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। सुपर सॉन्ग फॉर 99.9 रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरे महबूबा सॉन्ग दिने।

और तेरी चुनरिया दिल ले गई 90 का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं, देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है दिल में कुछ मजलता है।

काल तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंती का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग यहां से जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स वन नेकम तक रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी कर देखता रहो, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेक्स्ट का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और ढड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मूवी का नाम है कोबरा गिल, मैं मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए हैं। सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।
1: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ। दोस्तों एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

लोग का जो ईयरवार्ड कोलीखा डवान एंड ओनली भैया चंद्रसेन गंगा जी का जन्मदिन है, तो इसी खुशी के उपलक्ष्य में हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी मीडिया वर्कर्स, खास करके डायरेक्ट लीडर मीडिया वर्कर्स ओम रूपर्स अल कोलीखास की तरफ से भाई गंगा जी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश करते हैं और ऊपर वाले से विनती करते हैं कि हम लोगों के बीच ये महान उस्ताद 100 साल से ऊपर तक जिए और अच्छी तंदुरुस्ती के साथ। नामस अल कोलीखास फ्रेंड फैमिली फन हार्टिक फेलिसिटेट भाई गंगा जी en we houden zoveel van u dat wij u boven de 100 jaren met ons samen willen zien genieten, vooral zingen, fun maken, omroepen. U bent een groot voorbeeld van ons en natuurlijk ook onze master, onze guru bij karaoke en ook met live optredens. We zijn u reuze dankbaar. En ook nogmaals van harte gefeliciteerd. Happy happy birthday song by Sonu Nigam ji, speciaal voor u namens al uw dierbaren. Hari Om. God bless you, bhai. So so lobby lobby and blessing to aapko. Aapke charnon mein hum sab सर नवाते हैं महा महा गुरु वत्सैमै सुपर ट्रोट्स ऑफ यू दैट ही नॉट स्टेट्स दिक्सा द लीफ नीट फॉर क्लाप मा दैट साल यू मार एंड केट सेल्फ मोटे डून एंड दैट यू नो स्टेट्स बाप रे बाप सो परफेक्ट नो सिंग्ड हैं वत्स एन गॉड रेज डंकबार मेट यू हरि ओम एंड बाय दिस Bij deze, ik heb echt geen woorden hoor, bhai. Ik bedoel, ik stotter, ik totlawa. Ik bedoel, het komt rechtstreeks uit mijn hart. En ook namens alle collega's. Happy, happy birthday to you, bij Sonu Nigam.

हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मशहूर अनाउंसर साथी और हम लोगों का महा महा गुरु दवाने डोंगरी मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा जी का जन्मदिन है। तो इसी खुशी मौके पर हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्ट से लीड अलमीद वर्कर्स की तरफ से श्रीमान चंद्रसेन गंगा जी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परमपिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि हमारा उम्र भी आपको लग जाए भाई। और इसी खुशी के मौके पर ये अति सुंदर बयान उस्तादों का उस्ताद कृष्ण राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज पर में सुनिए और एंजॉय कीजिए। जन्मदिन पर तेरा हम जरूर नाचेंगे ना।

मेरे बड़े भाई, इसी खुशी मौके पर जैसे आप लोगों के मालूम है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त महान अनाउंसर साथी हम लोगों का बड़का भैया द वन एंड ओनली मैस्ट्रो चंद्र सेन गंगा इस यारख, तो इसी खुशी के मौके पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर अलमेड वर्कर्स कोलेगास और सभी कर्मचारियों की तरफ से भाई चंद्र सेन गंगा जी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि हम लोगों का उम्र भी हमारे बड़का भैया हम लोगों का उस्ताद हम लोगों का महा महा गुरु को लग जाए। 8 मिनट रह गया है साथियों 8 बजने में, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का महान अनाउंसर साथी मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा जी का जन्मदिन हम लोग मिलकर मनाते हैं, तो हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्टर मीड वर्कर्स कोलेगास की तरफ से भाई गंगा जी को तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है ये अति सुंदर बयान के साथ इट्स ट्विस्ट फैशन बर्थडे सॉन्ग।

हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू उनसे बड़का भैया मैस्त्रो चंद्र सेन गंगा इस यार तो इसी खुशी के मौके पर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्टर लीड अलमीद वर्कर्स ओमरूपर्स एन नास्त भाई गंगा जी को तय दिल से बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेवन फेटा फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और वो बड़ी अरमान से, बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तिख का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना तो, और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है।

मिली जहां मिल गई, दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके।

तुम तो प्यार हो हो सजनी, और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए। फिल्म शहरा का ये फिल्म नीखती इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना नीखती नीखने से अस्तक का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना, और मिल के सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होने निहने से तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकंद के प्यारे, लक्ष्मीकंद प्यारे लाल के साथ में। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहाँ से हम चला देते हैं और यहाँ से मेरे दोस्ती मेरे प्यार।

और ओ दोस्तों, मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन अर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी, ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है, आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

और आंब की आ जाने से बहुत कुछ हो जाता है हमारे यार। तो दोस्तों और आगे गीतों के भार प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि कभी उदास हो जाओ, कभी उदास हो जाओ तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देने, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। क्या हमारा दिल खिलौना है दोस्तों कि खेलेंगे, और तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिलने मुझे खुशी है, मुस्कुराता रहना इसी तरह हमेशा, क्यों तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है।

और आशा भोसले किशोर कुमार का गाया हुआ सीन है। फिल्म के नाम है ये वादा रहा। कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, ताजमहल बहाने के लिए दौलत नहीं मिलती, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। दोस्तों कि कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार ही करना।

और तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई? कभी कभी नजर तो खफा हो जाती है कि मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत में नहीं था। ना रूठो, ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे। ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे, दिल के दुनिया तबाह कर जाएंगे। प्यार किया है हमने, कोई मजाक नहीं किया है, दिल के धड़कन तेरे नाम कर दी।

और जरा फिर से, और जरा फिर से कहना, और क्या कहना है हमारे यारो आपको, क्या कहना है, सोच मिलने चाहिए, दिल तो अपने आप ही मिल जाते हैं, तो शक ना कर मेरी जज्बातों पे, तेरे साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है, जितने इमायत है पानी की, मरते इंसान के लिए बस उतने ही मुझे तेरी तेरी जरूरत है।

लेकिन गलती मत करना दोस्तों कि गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठी। तो ये बात है कि कभी भूला कभी याद किया, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो खुशियों की पैगाम की तरह। हमने कब भुलाया है आपको, तुम याद रहते हो मुझे मेरे नाम की तरह। तो किताबों में क्या है,

0: ये पर्दा हटा दो।
1: और दोस्तों ये सब गीतों का भानु प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं। है ये गीत जो है आपको जरूर सुनना चाहिए।
2: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 Max Touch। Check।

और व्हाट इज योर मोबाइल नंबर सोनी निगम का यंगनी का ये गीत है हसीना मान जाएंगी, हसीना मान जाएंगी कि बिन आपके कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ पल के जुदाई भी सही नहीं जाती, तुम खुद ही समझ लो और तुम खुद ही समझ लो और प्यार की लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं जाती, लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं।

और लेके पहला पहला प्यार, और कौन के ये पहला पहला प्यार है हमारे यारो। और उसके बाद अभी हम और आगे अपना प्रोग्राम को आम की सुनाएंगे, यानी कि और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: मेरे दिल की चैन और सहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहां कहां सुना कुछ हुआ क्या
2: अभी तो नहीं।

और आपको भी कुछ हुआ है? नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गए हुआ जोंग है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जोंग है।

राम ने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए। और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद, फिल्म का नाम है काला बाजार। के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, यहाँ पे इस गीत बताते हैं। फिल्म के नाम है कुर्बानी, ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों। और हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

ऐसे कि कैसे, ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है। दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

और आकर दोस्तों मैं फिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्त, और आप तो जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।